चरण कमल बसेर दयंतर, अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ता कै बलिहारे, जिन पूरन पैज रखाई, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सत

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब से का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया।

वियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्राणवत नानक

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म मृथा

काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मन जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट की पढ़ पढ़ की जान। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तरत दब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहनि अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद है देती, वर्णत भिन्न भिन्न तो ही तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि न हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताही उबारा। जिन नर नाम तिहारू काहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा हा।

पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तं पाया।

को पूता पिता को काकू कौन मरे को दे संतापो हर जग हर ठग जग को ठगौरी लाई अर के ब्योग कैसे जियो मेरी माई रहाओ।

0: गुरमुख संगत सवै बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल वड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन।

वडमेल तमासा वाह गुरु तेरी सब रचना गुर प्रसाद पाये परमारत सतसंगत सेती मन खचना किया खेल वडमेल तमासा

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश कर कर विखे सृजनहार नानक सचे की साची कार एक दूजी पाव लख हो हे लख हो वह लख वीस एतराहि पद पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस नानक नदरी पाई है।

0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाते
1: नमो पान पाने नमो बान बांदे
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: परमंगी परमाते समस्ति प्रभुते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज देशां परम रूपे
0: नमो चोग चोगे सुरंग परम सिते
1: नमो राज देशां परम ब्रिदे
0: नमो शस्त्र पाणे।

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईशिष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अरूपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद्ध कर्ता परम परमेश्वरं परोक्ष

0: चाचरी छंत प्रसाद गोविंद मुकंदे उदारे अपारे
1: हरियाम
0: गोविंद मुकंद उदारे अपारे हरियंग करियंग नरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र ताने चतर चक्र

0: श्री चंद ना सत्रह ना मित्र ना परमंग ना पितरा ना चित्रा ना मित्र पर है पवित्रा
1: के
2: ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुपे
1: के आदि देव है के आप पेव है
2: के चित्रण बहिने के अधीन।

सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं दूता सर्वं भूता अंगं स्वरूपे अपंगं प्रभूते अगाध स्वरूपे निर्बाध प्रभूते निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना ताते ना माते ना जाते ना पाते सदैव प्रभा है ये है या है हमेश्वर सलाम है समस्तुल कलाम है के कामल करीम है के राज करीम है करीमुल कमाल है जो सुनल जमाल है हरिफुल शिकान है रियासल शिकान है अगंजुल कनीम है रजाय करीम है के नरकम प्रनास है वस्तुल निवास है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है अधेशुला लेख है अमेशुला पेख है करीमुल कमाल है के जुल अजमाल है के अजब स्वरूप है के हम तो प्रभूत है के अचल अनंग है के हम तो अपंग है हर भरे अकंज हर नर प्रपंज हर नर अखंड हर नर अमंड।

हमारा शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रुन को परमो बस कियो चीटी ते गुजर तुल्ला सब पर कृपा दिस कर फूला एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जाबा कर कर तो कबू तुम्हें मिलत दे तर सबू

के सब तो है जिन जग तू पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया। जी जग सब तू पाए एक वेख परचन आया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुरते पाया। लब लो हंकार तज तिशना बहुत नाही बोलना। गुर प्रसादी जिनी आप तजे हर वासना।

जैसी सर सरिता सकल में समुंदर बड़ो, मीर में सुमीर बड़ो, जगत बखान है बिरखन बिखै, जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कैमान है, पंछियन में हंस मिगराजन में सारदूल, रागन में श्री राग पारस पखान है, ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है, ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पात साह, सिर साहां दे साह, जिस पास बैठिया सोही है,

रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर

कर्म नाम बरनत सुमत सुकह टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन।